0: कुछ उनकी सुने, कुछ अपनी कहें, आइए दीवान खाना में चलें।
1: ये है आपका अपना प्रोग्राम दीवान खाना। आपके मेजबान हैं खलील शिराजी, सोफिया जमशेद और वसीमा आबिद।
2: प्रोग्राम दीवान खाना में तमाम सामेईन को आदाब। उर्दू सर्विस के सामेईन की महफिल में सबका इस्तकबाल करते हैं।
1: आज की महफिल में सबसे पहले शामिल करेंगे एक इंटरव्यू, तो आइए सुनते हैं।
0: हमारी इंटरव्यू सीरीज जापान में पाकिस्तानी में आज हमने जनाब मिर्जा आसिफ बेग को मधु किया है। वो ओटोज एआई के बानी और सीईओ हैं। आज हम उनके काम और जापान में उनकी जिंदगी के बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बेग साहब।
3: अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपकी इनविटेशन का, थैंक यू वेरी मच।
0: सबसे पहली बात आसिफ साहब, मुझे ये बताइए कि गाड़ियों की समंदर पार तिजारत में लाई गई तब्दीलियाँ जो आपने मुतारिफ कराई हैं, उनकी कुछ वजाहत कीजिए।
3: जी, सबसे पहले तो ये है कि जो गाड़ियों का कारोबार है, ये बहुत एक मैनुअल प्रोसेसेस के ऊपर चल रहा था। हमने इसमें वो सारे प्रोसेसेस को एलिमिनेट करके हमने उसकी जगह पर एआई लेके आए हैं, और एआई जो है वो सारे मैनुअल प्रोसेसेस को ऑटोमेट करती है, ज़्यादा उसमें एतमाद लेके आती है, ज़्यादा वजाहत और ज़्यादा विजिबिलिटी लेके आती है।
0: अच्छा बेग साहब, मुझे ये बताइए कि रवायती इस्तेमाल शुदा जो गाड़ियां हैं उनकी जो रवायती तिजारत होती थी, और जो अब आपका मॉडल है, इसमें साख्त या तरकीब और तरतीब जो इसकी कह लें या जो इसका स्ट्रक्चर है, उसमें क्या तब्दीली आई है?
3: सबसे पहले जब एक बैरून मुल्क से कोई गाड़ी ख़रीदता है तो बेसिकली वो गाड़ी नहीं, एक तस्वीर ख़रीद रहा होता है। गाड़ी की तस्वीर 3 महीने बाद जाके गाड़ी बनती है। तो हमें ये देखना था कि वो तस्वीर लेते वक्त जो फैसले करता है, उसके दिमाग में जो परेशानियाँ आती हैं कि ये गाड़ी कैसी होगी, क्या मुझे वक्त पे मिलेगी, क्या ये गाड़ी वही होगी जो मैं ख़रीदने जा रहा हूँ, उन सब सवालों का जवाब एक पुरअतमाद तरीके से टेक्नोलॉजी कैसे दे सकती है, जिसमें हमने गाड़ी की तस्वीर या गाड़ी की जो विजिबिलिटी है उसमें हमने एआर और वीआर की टेक्नोलॉजी को यूज़ किया है, और दूसरे दीगर जगहों के ऊपर हमने टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट किया है ताकि जो ख़रीदार है उसके एतमाद में इजाफा हो।
0: तो आपके इस मॉडल में वीआर भी है, तो उससे सार्फिन किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं?
3: जी, वो अपने मोबाइल फ़ोन से या जो ग्लासेस मिलती हैं वीआर के, वो लगा के पूरी फैमिली एक गाड़ी को अपने घर के टेबल पर, अपने घर के गैराज पर, हाथ की हथेली पर रख के भी गाड़ी को देख सकता है, उसको अंदर से भी देख सकता है, उसको चारों अतराफ से, उसको बिल्कुल ऐसा ही लगेगा टेंजिबिलिटी के अलावा कि जैसे गाड़ी उसके घर के गैराज में आ गई है।
0: ये बताइए कि इस वक्त कितनी कंपनियां आपके साथ आपके प्लेटफॉर्म में शरीक हैं?
3: इस वक्त हम अभी चूँकि इनिशियल स्टेज पे हैं, तो हम सिर्फ पब्लिक लिस्टेड जो सेलर्स हैं जापान के, हमने सिर्फ उनको ऑनबोर्ड किया है ताकि जो लोग हमें अच्छी क्वालिटी की गाड़ियां हमारे पोर्टल पर ला सकते हैं और जो हमारे मॉडल को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, वो 4 कंपनियाँ हैं मेन, और उनकी तकरीबन 10,000 गाड़ियाँ पर मंथ हमारे पोर्टल पर आती हैं।
0: तो क्या सिर्फ जापान में लिस्टेड कंपनियां ही आपके मॉडल को इस्तेमाल कर सकती हैं, या जो आम कारोबारी हैं गाड़ियों का काम करने वाले, जापान से कहीं भी भिजवाने वाले, कोई भी, सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, क्या वो भी इसको इस्तेमाल कर सकेंगे?
3: जी बिल्कुल, हम सिर्फ लिस्टेड कंपनीज तक महदूद नहीं हैं। एक तो ये वजह थी कि लिस्टेड गाड़ियों को, दूसरा ये था कि जब हम नॉन लिस्टेड लोगों के पास जाएंगे तो अब वो और भी पूरे तमाद होंगे हमारे साथ काम करने के लिए या हमारे पोर्टल पर गाड़ियों को सेल करने के लिए, कि जब उनको पता चलेगा कि इनके पास तो ऑलरेडी टेक्नोलॉजी भी है और पब्लिक लिस्टेड कंपनी जो मार्केट के लीडर हैं वो ऑलरेडी गाड़ियाँ बेच रहे हैं।
0: मिसाल के तौर पर मैं फरमाइश करती हूँ आपसे कि मुझे यहाँ गाड़ी चाहिए, तो हम कैसे, ज़ीरो से कैसे शुरू करूँगी मैं?
3: उसके 3 तरीकाकार हैं। चलें सबसे पहले चलते हैं हम पुराने तरीके पर। आप आएँ अपनी वेबसाइट पर, हमारी वेबसाइट पर आएँ और पुराने तरीके से गाड़ी ख़रीद सकते हैं, यानी कि आप जाएँ उसको सर्च करें, टोयोटा डालें, ये डालें उसके साथ, जैसे आप हमेशा ख़रीदते हैं वो लोग भी गाड़ी ख़रीद सकते हैं। अच्छा, दूसरे लोग हैं जिन्होंने चलते चलते, आज हम बहुत कुछ करते हैं, यानी कि हम कहीं जा रहे हैं, एलिवेटर में हैं, तो हम चाहते हैं वहीं पर ही हमारी कुछ ना कुछ 1-2 मैसेज चले जाएँ या किसी को वॉइस मैसेज कर दें, तो वो हमने एक फ़ीचर ऐड किया है स्मार्ट मैचिंग के नाम से। आप उसको सिर्फ बोलेंगे कि मैं ये गाड़ी लेनी है, तो हमारा सिस्टम आपको वो गाड़ी निकाल देगा। अच्छा, जो सबसे मॉडर्न तरीका है तीसरा, वो ये है कि एआई आपके सामने आके खड़ी हो जाएगी। 5 लोग खड़े हो जाएंगे। सबसे पहले हमारा सेलमैन जो एआई का, वो खड़ा होगा आपके सामने। आप उससे सारी बात करेंगे, मुझे ये गाड़ी चाहिए, वो आपको निकाल के देगा। आप उसे कहेंगे नहीं मुझे ऐसे कर दो, वैसे कर दो, वो सारी गुफ्तगू आपकी, जब तक आपकी प्राइस डिस्कस हो जाती है। फिर हमारा दूसरा मॉडल है जो गाड़ी की इंस्पेक्शन करके देता है, یعنی کہ جاپانی جو انسپیکشن شیٹ ہوتی ہیں وہ ساری جاپنیز میں ہوتی ہیں, تو وہ فوری طور پر گاڑی کی کنڈیشن کو آپ کے لیے پڑھ کے دیتا ہے آپ کی زبان میں. جب وہ کلیئر ہو جاتی ہے تو پھر پیمنٹ والے آ جاتے ہیں, تو پیمنٹ کا جو ہمارا اے آئی ہے وہ پھر آپ سے پیمنٹ لیتا ہے اور آپ کو انوائس بنا کے دیتا ہے, اور آپ اپنا ایڈوانس پے کر سکتے ہیں کریڈٹ کارڈ کے ذریعے یا آپ اپنے بینک میں جا کر اس کو کر سکتے ہیں.
0: یہ سارا سلسلہ پہلے بنانا پھر اس کو فروغ دینا آسان نہیں رہا ہوگا, کیسے چیلنجز آئے, کیسی مشکلات آئیں؟
3: جی, سب سے پہلے تو جب میں نے جاپان میں آیا اور وہاں سے اگر میں شروع کروں تو بہت سارے چیلنجز تھے, مطلب ہر طرح کا چیلنج تھا, نیا کلچر تھا, نئی زبان تھی. جب آپ کچھ بھی چیز بنا لیتے ہیں ظاہری بات ہے آپ نے اس کو مارکیٹ میں لے کے جانا, تو وہ مارکیٹ میں چاہ رہا تھا بیسٹ سے بیسٹ لوگوں کے پاس پہلے اپنے آئیڈیا کو لے کے جایا جائے. تو وہ جب میں لے کے گیا تو وہ ظاہری بات ہے وہ جاپنیز تھے, وہ جب بیسٹ تھے تو ان کے سوالات بھی بیسٹ تھے اور ان کے اسٹینڈرڈ بھی اور ان کے معیار بھی بیسٹ تھے. ان کو میچ کرنا, ان کو عبور کرنا اور ان کو ان سے یہ انڈورسمنٹ لینی,

0: कि यस दिस इज़ समथिंग न्यू और इसके ऊपर एतमाद किया जा सकता है, क्योंकि एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी का एपीआई लेना और अपने सिस्टम से इंटीग्रेट करना ये कोई सादा बात नहीं है। ये बहुत बड़ी उनको अपने अंदरूनी तौर पर भी बहुत ज़्यादा कंप्लायंस और उनकी सारी परमिशन से गुजरना पड़ता है, तो शायद ये सबसे मुश्किल तरीन काम था।
1: आप मुझे बताइए कि काफ़ी अरसा हो गया आप जापान में हैं, तो इस सफ़र का आगाज़ कब हुआ, जापान की तरफ किस चीज़ ने माइल किया या क्या चीज़ आपको खींच लाई जापान में?
0: मेरे ख्याल में सबसे सादा जवाब इसका तकदीर है, लेकिन अगर आप ज़िंदगी के मामलात के हिसाब से देखें तो यहाँ पर यही पढ़ने और आगे बढ़ने के लिए आए थे, लेकिन कभी ये नहीं समझा था कि जापान हमारी ज़िंदगी का एक इतना बड़ा हिस्सा बन जाएगा और हम जापान से इतना कुछ सीखेंगे। बहुत कुछ सीखा है हमने जापान से, ये भी सीखा है कि ज़हानत नहीं कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन जो है वो इंसान को कामयाब करता है। और यहाँ पर जैसे जो इकदार हैं यहाँ पर, वो कारोबारी मामलात में अगर आप उनको अडॉप्ट कर लें तो कामयाबी यकीनन हो जाती है, यानी कि आप वादे की पासदारी करें, किसी को गलत बयानी ना करें। तो हमने ये उनसे सीखी और वो हमारे लिए मेरे लिए बहुत मददगार साबित हुई।
1: तो मुझे थोड़ा सा अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड और पाकिस्तान में कहाँ से ताल्लुक है कुछ थोड़ी सी वो बात बताएं।
0: जी, पाकिस्तान में मेरा फैसलाबाद से ताल्लुक है, पैदाइश मेरी सरगोधा में हुई लेकिन मेरी सारी परवरिश फैसलाबाद में हुई, कारोबार अभी हम लाहौर से कर रहे हैं, तो मेरा पाकिस्तान में काफ़ी सारी जगहों से ताल्लुक है इस हिसाब से। एजुकेशन जो है वो मैंने जो अपना कॉलेज था वो मैंने पाकिस्तान से किया, उसके बाद मलेशिया से मैंने अपना ऑस्ट्रेलियन प्रोग्राम था 2-in-1 वो मैंने वहाँ से मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया से किया, फिर मैंने एक मास्टर्स जो था अपना वो रशिया से किया यूक्रेन से, और फिर जापान आए, और रिसेंटली अभी मैंने अमेरिका से यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन से मैंने एमबीए भी किया पिछले साल। जी,
1: तो ये है आपका तालीमी सफ़र। और जापान में आप ज़िंदगी कैसी गुजर रही है, आप अपने अहले खाना के साथ या मैं और यहाँ कुछ ऐसी एक जनरली हमने कारोबारी बातें कर ली, एक हल्की फुल्की कुछ बताएं कि आप रहते हैं यहाँ और कैसा लगता है रोज़मर्रा ज़िंदगी में?
0: जी बिल्कुल, मैं अपनी फैमिली के साथ, तीन बेटियाँ हैं, फैमिली है, वाइफ है, हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं और सारी फैमिली को जापान बेहद पसंद है, पुरसकून जगह है। मैं पूरी दुनिया घूमता हूँ अपने कारोबार के सिलसिले में, बच्चों को यहाँ पर हम छोड़ जाते हैं, यहाँ पर फैमिली होती है, लेकिन कभी मुझे ये नहीं आया कि कोई सेफ्टी, यानी कि बहुत महफूज मुल्क है और बड़ा हम इंजॉय कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
1: आप क्या समझते हैं कि टेक्नोलॉजी के जरिए अगर आलमी मार्केट को नौजवानों ने चैलेंज करना हो तो उसके लिए उनको कैसा अंदाज़े फिक्र चाहिए होगा?
0: दुनिया में इस वक्त उस बंदे की डिमांड है जो प्रॉब्लम सॉल्वर है, अगर आप मसाइल का हल पेश कर सकते हैं तो पूरी दुनिया आपको मौके देने के लिए तैयार बैठी है। तो ये स्टार्टअप्स की एक नई इकोनॉमी जो है वो दुनिया में स्टार्ट हुई है, यानी कि अगर आप थोड़ा सा इसका इकोनॉमी का बैकग्राउंड देखें तो ये खेतों से या देहाती विलेज इकोनॉमी से इकोनॉमी स्टार्ट होती है, फिर विलेज के बाद ये हमारी सनती जो है वो इनकलाब आया और यहाँ पर इकोनॉमी स्टार्ट हुई, उसके बाद फिर इंटरनेट और इन्फॉर्मेशन इकोनॉमी स्टार्ट हुई। इस वक्त जो है वो इकोनॉमी जो है वो स्टार्टअप की इकोनॉमी चल रही है, तो बच्चे जितना टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें और प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ आएं, और यही सलाहियत उनको आगे चाहिए आगे बढ़ने के लिए।
1: नौजवान नस्ल की बात हो रही है तो उनके लिए आप कोई पैगाम देना चाहेंगे?
0: मैं यही बात कहूँगा कि अपनी जहानत से ज़्यादा डिसिप्लिन के ऊपर और सिविक सेंस के ऊपर तवज्जो दें, उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। जब आप अपनी सिविक सेंस को ओपन रखते हैं और कंसिस्टेंसी, अपना एतमाद जो है वो हर वक्त उसके ऊपर अगर आप ग्रिप रखते हैं तो आपको बहुत सारे मौके मिलते हैं और आप एक डिफरेंट तरीके से मुआशरे में मौक़ों को हासिल कर सकते हैं, क्योंकि जब आपकी सिविक सेंस आपकी ओपन है तो फिर आपको मुआशरे में नज़र आने वाले मसाइल भी नज़र आते हैं, जब मसाइल नज़र आते हैं तो आप उनका हल भी सोच सकते हैं, जब आप हल सोचने निकलेंगे तो टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे, तो ये एक सारी एक चेन है जो जुड़ी हुई है। और जब आपकी सिविक सेंस हमारी ख़ासतौर पर हमारे मुल्क में लोगों को जिसकी बहुत ज़रूरत है, उससे एक बड़ा एक अच्छा मुआशरा भी जो है वो सामने आता है।
1: तो आसिफ साहब से अब मैं सवाल करूंगी कि आप जापान पाकिस्तान ताल्लुकात के मुस्तकबिल को कैसे देखते हैं?
0: जापान और पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो बड़ा ताबनाक हो सकता है, लेकिन उसके लिए मेरी नज़र में पाकिस्तानियों को, हमें बसीयत पाकिस्तानी ज़्यादा कोशिश की ज़रूरत है। पाकिस्तान में बहुत सारे यंग टैलेंट मौजूद है जबकि जापान में उस चीज़ की डेफिशिएंसी है, तो इन दोनों चीज़ों को अगर कनेक्ट किया जाए एक पूरी मनसूबाबंदी के साथ, और इसमें किसी किस्म की जल्दी नहीं होनी चाहिए, पूरी पहले मनसूबाबंदी हो, उसकी पहले पूरी ट्रेनिंग हो पाकिस्तान में, फिर उन बच्चों को जापान जैसी सोफिस्टिकेटेड मार्केट के साथ कनेक्ट किया जाए।

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

यह है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। स्वागत है सभी श्रोताओं का आपके मनपसंद कार्यक्रम चेरी के देश से में, उगते सूर्य के देश से। सबसे पहले स्वीकार

0: वैसे जानती है, इस साल का योग दिवस तो और भी खास हो गया है।
1: अच्छा, ऐसी क्या खास बात हुई?
0: खास बात ये हुई कि भारत के अहमदाबाद शहर में 4 से 8 जून तक पहली अंतर्राष्ट्रीय योगासन प्रतियोगिता हुई, जिसमें दुनिया भर के 79 देशों से 522 योग खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। भारत प्रथम स्थान पर आया, लेकिन जानती है दूसरे स्थान पर कौन सा देश था?
1: दूसरे स्थान पर जापान था ना, है ना?
0: जी बिल्कुल सही कहा। इस प्रतियोगिता में अलग अलग आयु वर्ग की 6 श्रेणियां थी, जिसमें 10 से 14 साल के बच्चों का योग प्रदर्शन तो हैरतअंगेज करने वाला था, लेकिन सबसे बड़ी आयु वर्ग यानी 45 से 55 साल की सीनियर कैटेगरी भी किसी तरह से कम नहीं थी। इस आयु वर्ग में पारंपरिक योग आसन प्रतिस्पर्धा कैटेगरी सी में स्वर्ण पदक जीत कर आई जापान की मीनाक्षी मियोको से हमें बातचीत का मौका मिला, जिसके कुछ अंश हम खास तौर से अपने श्रोताओं के लिए लेकर आए हैं। मीनाक्षी जी से हमारा पहला सवाल था कि स्वर्ण पदक जीतकर उन्हें कैसा महसूस हो रहा है, तो वे बोली,
2: "信じられない。まだそんな感じです。
1: मीनाक्षी जी कह रही हैं, अविश्वसनीय, मुझे अब भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मैंने स्वर्ण पदक जीता है। जीवन में कभी स्वर्ण पदक जीतने की कल्पना नहीं की थी। जब प्रतियोगिता खत्म हुई और परिणाम घोषित हुआ, तब भी ये सच नहीं लग रहा था, लेकिन गले में मेडल पहनाए जाने के बाद थोड़ा थोड़ा विश्वास होने लगा। फिर जब टीम और परिवार ने बधाई देनी शुरू की, तो सही मायने में सचमुच जीत का एहसास हुआ और इस जीत की बहुत खुशी हुई।
0: हमने मीनाक्षी जी से पूछा कि ये विश्वास करना आखिर इतना मुश्किल क्यों था, तो उन्होंने बताया कि हालांकि वे करीब 30 साल से योग कर रही हैं और पिछले 2 दशक से बच्चों और बड़ों को सिखा भी रही हैं, लेकिन उन्होंने योग को एक खेल प्रतियोगिता के रूप में कभी नहीं देखा था। साथ ही दुनिया भर से आए प्रतियोगियों की प्रतिभा देखकर उन्हें लगा शायद वे उनके सामने टिक नहीं पाएंगी। एरेना की चकाचौंध रोशनी के बावजूद उन्होंने पूरी एकाग्रता के साथ अपने आसन किए।
1: वाकई दैनिक जीवन में अच्छे स्वास्थ्य के लिए योग करना और बतौर एक खिलाड़ी के रूप में योगासन करना एकदम अलग बात होती है।
0: जी सही कहा। मीनाक्षी जी बता रही हैं कि उन्होंने प्रतियोगिता के लिए कब और कैसे तैयारी शुरू की।
2: I started preparing seriously beginning for this year, but basically I practiced.
1: वे कह रही हैं कि मैंने तो साल के आरंभ से ही इस प्रतियोगिता के लिए गंभीरता से तैयारी शुरू की, लेकिन मैं शुरू से ही हर दिन करीब 1.5 घंटे का स्व योगाभ्यास करती हूँ। पहले जब स्वास्थ्य के लिए योग किया करती थी तो आसन में देर तक नहीं रहती थी, लेकिन जब एक खिलाड़ी के रूप में तैयारी शुरू की तो आसन में पूरी स्थिरता और संतुलन के साथ लंबे समय तक रहने का अभ्यास किया और हर रोज 4 घंटे नियमित अभ्यास करने लग गई। वहीं अपने खान पान में कब भोजन करना है, कब पानी पीना है, ऊर्जा बनाए रखने के लिए क्या करना है जैसी बारीकियों पर भी अध्ययन शुरू कर दिया। भारत के योगा कोच ने भी आसनों का अभ्यास ऑनलाइन कराया, लेकिन इस पहली विश्व योगासन प्रतियोगिता के आयोजन का पैमाना मेरी कल्पना से कहीं अधिक विशाल और शानदार था तथा कड़ी प्रतिस्पर्धा थी।
0: पारंपरिक योगासन कैटेगरी में खिलाड़ी को आसन की जटिलता, स्थिरता, संतुलन, आसन में आने और बाहर निकलने के सही तरीके के साथ ही आसन को कितनी देर के लिए कितनी खूबसूरती से पकड़ा है जैसे बिंदुओं पर अंक दिए गए। खिलाड़ी को नियत समय में सूची से चुने हुए आसन करने होते हैं, जितना मुश्किल आसन उतना ही अधिक अंक। विश्व योगासन प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर आने वाली जापानी टीम में कुल 21 सदस्य थे, जिसमें से 18 खिलाड़ी थे। टीम ने अलग अलग आयु वर्ग और विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में 3 स्वर्ण, 3 रजत और 5 कांस्य पदक जीते। सबसे बड़ी आयु का खिलाड़ी 54 वर्ष के थे और सबसे छोटे 11 साल की 2 बच्चियां थीं। मीनाक्षी जी के इन शिष्यों ने आर्टिस्टिक युगल योग प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक जीता।
1: आर्टिस्टिक युगल योग प्रतिस्पर्धा, इसमें किस तरह का योग किया जाता है?
0: इसमें खिलाड़ी को 4x4 मीटर के चौकोर घेरे में संगीत पर नृत्य के साथ योगासन करना पड़ता है।

0: बच्चों की तैयारी के बारे में मीनाक्षी मियोको जी ने बताया।
1: इंडो नो कोच नो ओकागे मो अरिमासु शी
2: मीनाक्षी जी कह रही हैं कि बच्चों की तैयारी में भारत के कोच से बहुत मदद मिली। मैं भी बच्चों को प्रोत्साहित तो किया करती थी, लेकिन उनकी माताओं की मेहनत भी कम नहीं है। उनका बहुत सहयोग रहा। आर्टिस्टिक योग परफॉर्मेंस में पिरामिड फॉर्मेशन यानी एक पर एक चढ़कर आसन करने के अधिक अंक थे, इसलिए हमने अपने प्रदर्शन में इन्हें शामिल किया। इनके तालमेल के लिए दोनों बच्चों का एक साथ होना ज़रूरी था। ये दोनों बच्चियाँ अलग अलग शहरों में रहती हैं, इसलिए रोज़ाना मिल भी नहीं सकती थीं। सिर्फ ऑनलाइन अभ्यास कर सकते थे। इतना बड़ा स्टूडियो मिलना भी मुश्किल था, इसलिए जब भी मिले तो किसी पार्क में अभ्यास किया।
0: मीनाक्षी जी बच्चों के भोलेपन से खूब प्रभावित हैं। उन्होंने बताया कि ये बच्चे छोटे हैं और उन्होंने कभी इतने लोगों के बीच इतने विशाल स्तर पर योग नहीं किया था। इस तनाव के कारण दोनों आपस में खूब लड़ते, फिर जल्दी दोस्त भी बन जाते। प्रतियोगिता से पहले भी लड़े, लेकिन अंततः दोनों ने बहुत अच्छा तालमेल करते हुए शानदार प्रदर्शन किया और कांस्य पदक जीता। अपने प्रतिस्पर्धियों के लिए भी खुले दिल से ताली बजाते और उनका हौसला बढ़ाया करते। वे कहती हैं कि बच्चे कितने सच्चे होते हैं, उनमें सहज रूप से स्पोर्ट्स पर्सन स्पिरिट होती है।
2: वाकई बच्चों की मासूमियत बहुत प्यारी होती है। अच्छा शांग्रीला जी, आम लोग अक्सर योग को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य तथा आध्यात्म से ही जोड़ते हैं, लेकिन योग को एक खेल प्रतिस्पर्धा के रूप में देखने से इसके प्रति लोगों का नजरिया बदल जाएगा, है ना?
0: यकीनन बदलेगा। इस बारे में मीनाक्षी जी का कहना है।
2: वे कह रही हैं, आशा करती हूँ इससे जापान में योग को और बढ़ावा मिलेगा। इस तरह का मूल्यांकन चीजों को और स्पष्ट कर देता है। अपने अंक देखकर बच्चे प्रेरित होते हैं और बेहतर करने का प्रयास करते हैं। योग शरीर को लचीला और मन की एकाग्रता बढ़ाता है, जिसका फायदा अन्य कार्य करने में भी देखा जा सकता है। मैं कई साल से बच्चों को योग सिखा रही हूँ। ये प्रणाली बहुत ही स्पष्ट और प्रभावशाली है। बच्चों को स्पष्ट लक्ष्य चाहिए। हालांकि योग सिखाता है कि हमें एक दूसरे से तुलना नहीं करनी चाहिए, लेकिन इससे उनमें बेहतर करने के लिए जोश बढ़ता है। इस तरह के मूल्यांकन व्यवस्था योग गुरु और शिष्य दोनों के लिए अच्छी है। भविष्य में स्थानीय स्तर पर बच्चों के लिए योग प्रतियोगिताएं आयोजित कराना चाहती हूँ।
0: मीनाक्षी जी ने यह भी बताया कि वैसे तो जापान में योग काफी लोकप्रिय है, लेकिन अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये महिलाओं में अधिक प्रचलित है। वहीं बहुत ही कम किशोर और पुरुष इससे जुड़े हैं। लेकिन अब जब योग को एक खेल के रूप में प्रचार मिलेगा तो ये पुरुषों को भी आकर्षित करेगा। लोग समझ सकेंगे कि योग सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं, बल्कि ये अनुशासन, बल, संतुलन, एकाग्रता और कलात्मक अभिव्यक्ति भी सिखाता है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जापान का शानदार प्रदर्शन भी लोगों में गर्व की भावना जगाएगा और अधिक लोगों को योग से जोड़ेगा, खासतौर से युवा पीढ़ी को।
2: अक्सर देखा जाता है कि युवा योग की बजाय जिम जाना पसंद करते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन मीनाक्षी मियोको जी 18 साल की आयु में योग से जुड़ी। जीवन में आई कठिनाई ने उन्हें योग की तरफ मोड़ा। वे कहती हैं,
3: माय डैड डाइड आफ्टर दैट आई गॉट वेरी डिप्रेस्ड।
2: मेरे पिता की मृत्यु के बाद मैं अवसाद से घिर गई। तब लोगों ने सुझाव दिया कि योग शुरू करो। उस समय मैं और मेरी माँ बहुत कठिन दौर से गुजर रहे थे। मैं अपने मानसिक तनाव या अवसाद के लिए दवाएं नहीं लेना चाहती थी, लेकिन जब योग शुरू किया तो उससे मुझे बहुत मानसिक शांति मिली। इसके बाद योग में आगे अध्ययन करने के लिए मैं भारत गई। वहीं मेरे योग गुरु ने मुझे मीनाक्षी नाम दिया। अब करीब 20 साल से छोटे बच्चों से लेकर बड़ों को योग सिखा रही हूँ।
0: उन्होंने बताया कि हाल ही में आयोजित विश्व योग प्रतियोगिता में शामिल होने के कारण योग ने दूसरी बार उनके जीवन को बदला है। स्वर्ण पदक मिलने से खुद पर तो भरोसा बढ़ा है, सम्मान भी बढ़ा है, देश विदेश के नए दोस्त भी बने हैं।
2: वाकई योग के अनगिनत फायदे हैं।
0: सही कहा। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय हम सब के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सभी उसी दिशा यानी बढ़ती उम्र की ओर अग्रसर हैं।
2: बिल्कुल, बढ़ती आयु में स्वस्थ रहने के लिए योग अपनाएं।
0: जी हाँ, तो मित्रों जल्दी से पत्र लिखें और बताएं कि जापान की स्वर्ण पदक विजेता मीनाक्षी मियोको से खास बातचीत आपको कैसी लगी।
2: आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम के दूसरे पड़ाव की ओर और लेते हैं ये पत्र। छत्तीसगढ़ से आनंद मोहन बाइन ने 17 मई को प्रसारित चेरी के देश से कार्यक्रम के प्रसारण की गुणवत्ता पर 3 जून को विस्तृत रिपोर्ट भेजने के साथ सिर्फ एक लाइन लिखी है। आज के कार्यक्रम में विजय कुमार जी ने नए कार्यक्रम की कमी का जिक्र किया है। लगता है रेडियो जापान अब श्रोताओं से कोई मतलब नहीं रखता है।
0: आनंद मोहन जी, बात तो जरा गंभीर है, लेकिन NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा को अपने श्रोता मित्रों से भरपूर लगाव है, तभी तो हम हर बार कुछ नया प्रयास करते हैं और नई से नई जानकारी लाने के लिए अथक मेहनत भी करते हैं। खाने से जुड़ी याद पर एक कार्यक्रम में लंबी चर्चा हुई, फिर अभी हाल ही में जापान में ऑटो रिक्शा जैसी अनोखी सवारी की सैर पर भी हम आपको लेकर गए। इन सब के बारे में आपके पत्र का हमें अभी तक इंतजार है।
2: बस नवीनतम जानकारी प्रेषित करने के तरीके में थोड़ा बदलाव है। अब सुनने के साथ ही वेबसाइट पर नई नई वीडियो का भी आनंद ले सकते हैं।
0: और हाँ, स्नेह दो तरफा होना चाहिए ना, हमारी मेहनत के लिए नियमित पत्र तो लिखे ही जा सकते हैं। आपके अगले पत्र का हमें इंतजार है। अब देखिए, ये पत्र आया है छत्तीसगढ़ जिला बालोद से शिव कुमार अंगारे शिक्षक का। भाई वाह, उनका ये देखिए हस्तलिखित पत्र है। और रोहिणी जी जानती है, एक जमाने में इनके खत बहुत ही नियमित रूप से मिला करते थे। कई साल बाद उन्होंने हमारी सुध ली है।
2: अच्छा, यानी उम्मीद करते हैं कि एक बार फिर पत्रों का सिलसिला शुरू होगा। पत्र में क्या लिखा है पढ़कर बताएं जरा।
0: मैं रेडियो जापान का कई वर्षों तक नियमित श्रोता रहा हूँ, साथ ही पत्र के माध्यम से विविध कार्यक्रम में भाग लेता रहा हूँ। NHK से डाक द्वारा प्रकाशित सामग्री मिलती रही है, लेकिन किसी कारणवश कुछ वर्षों से रेडियो जापान नहीं सुन पाया। शॉर्टवेव पर आपका प्रसारण नहीं मिल रहा है। मैं पुनः NHK वर्ल्ड जापान से नियमित श्रोता के रूप में जुड़ना चाहता हूँ। अतः अनुरोध है कि मेरी इन जिज्ञासाओं का समाधान करें। बहुत सारे प्रश्न भी लिखे उन्होंने। क्या रेडियो जापान का प्रसारण आज भी शॉर्टवेव पर होता है? यदि हाँ तो कृपया फ्रीक्वेंसी और प्रसारण समय बताएं। क्या हम आपके कार्यक्रम किसी मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं? क्या NHK श्रोता मित्र पत्रिका अब भी प्रकाशित होती है? यदि हो तो प्रेषित कीजिए।
2: शिव कुमार जी, NHK वर्ल्ड की हिंदी सेवा परिवार में आपका दोबारा स्वागत है। हमारा प्रसारण अब भी शॉर्टवेव पर 11655 किलोहर्ट्ज पर भारतीय समय अनुसार रात 9 बजे से उपलब्ध है।
0: जी बिल्कुल, आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं। ऐप स्टोर में जाकर NHK वर्ल्ड का ऐप खोजकर डाउनलोड करें और हिंदी भाषा का चयन करें। ये ऐप और हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध सारी सामग्री पूरी तरह से निशुल्क है। आप अब रेडियो की बजाय हमारे कार्यक्रम और वीडियो इस ऐप पर सुन और देख सकते हैं।
2: जहां तक बात श्रोता मित्र पत्रिका की है, तो अब इलेक्ट्रॉनिक पेपरलेस का चलन है। वेबसाइट पर हर सप्ताह प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की तस्वीर आदि के साथ उनकी संक्षिप्त जानकारी दी जाती है। तो यह अगला पत्र केसिंगा उड़ीसा से सुरेश अग्रवाल जी का है। लिखा है, आदरणीय वायला जी एवं शांग्रिला जी, स्नेह नमस्कार। जापान में ऑटो रिक्शा पर पूरा विशेषांक पेश करने के लिए शुक्रिया।
0: अरे आगे पढ़ो, और क्या लिखा है?
2: नहीं, सिर्फ इतना ही लिखा है।
0: क्या बात कर रही हो, सिर्फ इतना से लिखा है, एक लाइन? सुरेश जी, आप हमेशा ही विस्तार से बहुत सार गर्भित प्रतिक्रिया लिख देते हैं। इस बार उसकी कमी बहुत खल रही है। इस भीषण गर्मी में सब खैरियत तो है ना? आपके अगले लंबे पत्र का इंतजार है। और देखिए, फेसबुक पर उमेश कुमार शर्मा की टिप्पणी है, वायला जी और शांगला जी कोनिचवा, शायद आप मुझे भूल गई हो, किंतु मैं नारनौल हरियाणा में आपको सदा याद करता हूँ क्योंकि मैं रेडियो

0: जापान को रेडियो पर सुनता था, लेकिन जब आप इंटरनेट पर अपने कार्यक्रम सुनाने लगे तो आपसे संपर्क नहीं कर पाया। जापानी व्यंजन बनाने की रेसिपी आपने जो शुरू की उनका स्वाद लेने का मन करता है, लेकिन चेरी के देश से कार्यक्रम में मिवाको कोएजुका जी को सुनने का जो आनंद मिलता था वो काफ़ी अच्छा लगता था। एक जापानी होने के बावजूद उनका श्रोताओं के पत्रों का उत्तर देने वाला अंदाज मुझे अब तक याद है। आपके द्वारा समय समय पर भेजे गए कार्ड्स मेरे पास सुरक्षित हैं, जिनको देखकर दिल को सुकून मिलता है और इनके द्वारा रेडियो जापान हिंदी सर्विस की यादें ताज़ा हो जाती हैं।
1: उमेश जी, आपकी टिप्पणी का स्वागत है। हालांकि मैं अभी नई हूं, लेकिन जब भी NHK की पुरानी यादें ताज़ा करते हैं तो हमारे सहयोगी पुराने श्रोता मित्रों को भी खूब याद किया करते हैं। वो कहते हैं ना, ओल्ड इज गोल्ड। आज के कार्यक्रम पर आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार है। और 14 जून के अंक पर बनाई रील पर बड़े मज़ेदार कमेंट्स हैं।
0: अच्छा
1: जी, मृणालिका ओझा ने थम्सअप की इमोजी भेजी है, तो लाल बाबू पांडे ने भारत में आपका स्वागत किया है, मुरारी साह ने रील को बहुत अच्छा बताया है, अशोक मोजीदारा ने नाइस लिखा है।
0: वाह, श्रोताओं के मजेदार कमेंट सुनकर मजा आ गया। एक कमेंट मोनिता मिधा का भी है। खाने से जुड़ी बचपन की यादों को खंगालते हुए वे लिखती हैं, 31 मई के अंक में रोचक चर्चा सुनी, गर्मी की छुट्टियों में दादा दादी के साथ बिताए दिनों की यादें ताजा हो गईं, गर्मियों में मिलने वाले कमल के ताजा बीज का स्वाद आज भी याद है, बादाम जैसा स्वाद था, पंजाब में इन्हें कालालिया कहते हैं।
1: वाकई बचपन की यादें हमेशा याद रहती हैं।
0: रोहिणी जी, आपका भी कोई ऐसा प्रिय व्यंजन है जिससे कुछ खास यादें जुड़ी हैं क्या?
1: जी, मैं तो बिहार से हूँ, होली के समय बनने वाले दूध पुए को बहुत याद करती हूँ।
0: दूध पुए, हमारे यहाँ मालपुए बनते
1: हैं। जी हाँ, तो एक जैसे ही होते हैं और घर का स्वाद तो खुद से बन नहीं पाता, इसलिए यादों में ही रह गए हैं ये सब।
0: जी ये बात तो है, घर का स्वाद की बात ही अलग है। और दोस्तों, वक्त कह रहा है कि आपसे फिर मिलेंगे, इसलिए NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से अनुमति दीजिए अपनी सखी शांग्रिला जैन को,
1: रोहिणी रमन को।
0: सायोनारा, नमस्कार।

ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

0: यह है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। स्वागत है सभी श्रोताओं का आपके मनपसंद कार्यक्रम चेरी के देश से। मैं उगते सूर्य के देश से सबसे पहले स्वीकार करें अपनी सखी शांग्रीला जैन का कोनिचिवा, नमस्कार और आदाब।
1: सभी दोस्तों को रोहिणी रमन का भी कोनिचिवा, नमस्कार। फिर आया रविवार और लेकर आ गए हैं हम आपके पत्रों के उत्तर और जापान की एक योग साधक के साथ खास बातचीत।
0: रोहिणी जी, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आपको अनेक शुभकामनाएं।
1: शांग्रीला जी, आपको और हमारे सभी श्रोता मित्रों को भी बधाई।
0: धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः।

0: यानी 45 से 55 साल की सीनियर कैटेगरी भी किसी तरह से कम नहीं थी। इस आयु वर्ग में पारंपरिक योग आसन प्रतिस्पर्धा कैटेगरी सी में स्वर्ण पदक जीत कर आई जापान की मीनाक्षी मियोको से हमें बातचीत का मौका मिला, जिसके कुछ अंश हम खास तौर से अपने श्रोताओं के लिए लेकर आए हैं। मीनाक्षी जी से हमारा पहला सवाल था कि स्वर्ण पदक जीतकर उन्हें कैसा महसूस हो रहा है, तो वे बोली,
1: "信じられない。まだそんな感じです。
2: मीनाक्षी जी कह रही हैं, अविश्वसनीय, मुझे अब भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मैंने स्वर्ण पदक जीता है। जीवन में कभी स्वर्ण पदक जीतने की कल्पना नहीं की थी। जब प्रतियोगिता खत्म हुई और परिणाम घोषित हुआ तब भी ये सच नहीं लग रहा था, लेकिन गले में मेडल पहनाए जाने के बाद थोड़ा थोड़ा विश्वास होने लगा। फिर जब टीम और परिवार ने बधाई देनी शुरू की तो सही मायने में सचमुच जीत का एहसास हुआ और इस जीत की बहुत खुशी हुई।
0: हमने मीनाक्षी जी से पूछा कि ये विश्वास करना आखिर इतना मुश्किल क्यों था, तो उन्होंने बताया कि हालांकि वे करीब 30 साल से योग कर रही हैं और पिछले 2 दशक से बच्चों और बड़ों को सिखा भी रही हैं, लेकिन उन्होंने योग को एक खेल प्रतियोगिता के रूप में कभी नहीं देखा था। साथ ही दुनिया भर से आए प्रतियोगियों की प्रतिभा देखकर उन्हें लगा शायद वे उनके सामने टिक नहीं पाएंगी। एरेना की चकाचौंध रोशनी के बावजूद उन्होंने पूरी एकाग्रता के साथ अपने आसन किए।
2: वाकई दैनिक जीवन में अच्छे स्वास्थ्य के लिए योग करना और बतौर एक खिलाड़ी के रूप में योगासन करना एकदम अलग बात होती है।
0: जी सही कहा, मीनाक्षी जी बता रही हैं कि उन्होंने प्रतियोगिता के लिए कब और कैसे तैयारी शुरू की।
1: I started preparing seriously beginning for this year, but basically I practiced.
2: वे कह रही हैं कि मैंने तो साल के आरंभ से ही इस प्रतियोगिता के लिए गंभीरता से तैयारी शुरू की, लेकिन मैं शुरू से ही हर दिन करीब 1.5 घंटे का स्व योगाभ्यास करती हूँ। पहले जब स्वास्थ्य के लिए योग किया करती थी तो आसन में देर तक नहीं रहती थी, लेकिन जब एक खिलाड़ी के रूप में तैयारी शुरू की तो आसन में पूरी स्थिरता और संतुलन के साथ लंबे समय तक रहने का अभ्यास किया और हर रोज 4 घंटे नियमित अभ्यास करने लग गई। वहीं अपने खान पान में कब भोजन करना है, कब पानी पीना है, ऊर्जा बनाए रखने के लिए क्या करना है जैसी बारीकियों पर भी अध्ययन शुरू कर दिया। भारत के योगा कोच ने भी आसनों का अभ्यास ऑनलाइन कराया, लेकिन इस पहली विश्व योगासन प्रतियोगिता के आयोजन का पैमाना मेरी कल्पना से कहीं अधिक विशाल और शानदार था तथा कड़ी प्रतिस्पर्धा थी।
0: पारंपरिक योगासन कैटेगरी में खिलाड़ी को आसन की जटिलता, स्थिरता, संतुलन, आसन में आने और बाहर निकलने के सही तरीके के साथ ही आसन को कितनी देर के लिए कितनी खूबसूरती से पकड़ा है जैसे बिंदुओं पर अंक दिए गए। खिलाड़ी को नियत समय में सूची से चुने हुए आसन करने होते हैं, जितना मुश्किल आसन उतना ही अधिक अंक। विश्व योगासन प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर आने वाली जापानी टीम में कुल 21 सदस्य थे जिसमें से 18 खिलाड़ी थे। टीम ने अलग अलग आयु वर्ग और विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में 3 स्वर्ण, 3 रजत और 5 कांस्य पदक जीते। सबसे बड़ी आयु का खिलाड़ी 54 वर्ष के थे और सबसे छोटे 11 साल की 2 बच्चियां थीं। मीनाक्षी जी के इन शिष्यों ने आर्टिस्टिक युगल योग प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक जीता।
2: आर्टिस्टिक युगल योग प्रतिस्पर्धा, इसमें किस तरह का योग किया जाता है?
0: इसमें खिलाड़ी को 4x4 मीटर के चौकोर घेरे में संगीत पर नृत्य के साथ योगासन करना पड़ता है। बच्चों की तैयारी के बारे में मीनाक्षी मियोको जी ने बताया,
1: इंडो नो कोच नो ओकागे मो अरिमासु शी आनो वाताशि वा गंबारे त्ते ओएन शिते इरु गुराई दत्ता
2: इसके लिए। मीनाक्षी जी कह रही हैं कि बच्चों की तैयारी में भारत के कोच से बहुत मदद मिली। मैं भी बच्चों को प्रोत्साहित तो किया करती थी, लेकिन उनकी माताओं की मेहनत भी कम नहीं है, उनका बहुत सहयोग रहा। आर्टिस्टिक योग परफॉर्मेंस में पिरामिड फॉर्मेशन यानी एक पर एक चढ़कर आसन करने के अधिक अंक थे, इसलिए हमने अपने प्रदर्शन में इन्हें शामिल किया। इनके तालमेल के लिए दोनों बच्चों का एक साथ होना जरूरी था, ये दोनों

0: बच्चियाँ अलग अलग शहरों में रहती हैं, इसलिए रोजाना मिल भी नहीं सकती थी। सिर्फ ऑनलाइन अभ्यास कर सकते थे। इतना बड़ा स्टूडियो मिलना भी मुश्किल था, इसलिए जब भी मिले तो किसी पार्क में अभ्यास किया।
1: मीनाक्षी जी बच्चों के भोलेपन से खूब प्रभावित हैं। उन्होंने बताया कि ये बच्चे छोटे हैं और उन्होंने कभी इतने लोगों के बीच इतने विशाल स्तर पर योग नहीं किया था। इस तनाव के कारण दोनों आपस में खूब लड़ते, फिर जल्दी दोस्त भी बन जाते। प्रतियोगिता से पहले भी लड़े, लेकिन अंततः दोनों ने बहुत अच्छा तालमेल करते हुए शानदार प्रदर्शन किया और कांस्य पदक जीता। अपने प्रतिस्पर्धियों के लिए भी खुले दिल से ताली बजाते और उनका हौसला बढ़ाया करते। वे कहती हैं कि बच्चे कितने सच्चे होते हैं, उनमें सहज रूप से स्पोर्ट्स पर्सन स्पिरिट होती है।
0: वाकई बच्चों की मासूमियत बहुत प्यारी होती है। अच्छा शांग्रिला जी, आम लोग अक्सर योग को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य तथा आध्यात्म से ही जोड़ते हैं, लेकिन योग को एक खेल प्रतिस्पर्धा के रूप में देखने से इसके प्रति लोगों का नजरिया बदल जाएगा, है ना?
1: यकीनन बदलेगा। इस बारे में मीनाक्षी जी का कहना है।
0: वे कह रही हैं, आशा करती हूँ इससे जापान में योग को और बढ़ावा मिलेगा। इस तरह का मूल्यांकन चीजों को और स्पष्ट कर देता है। अपने अंक देखकर बच्चे प्रेरित होते हैं और बेहतर करने का प्रयास करते हैं। योग शरीर को लचीला और मन की एकाग्रता बढ़ाता है, जिसका फायदा अन्य कार्य करने में भी देखा जा सकता है। मैं कई साल से बच्चों को योग सिखा रही हूँ। ये प्रणाली बहुत ही स्पष्ट और प्रभावशाली है। बच्चों को स्पष्ट लक्ष्य चाहिए। हालांकि योग सिखाता है कि हमें एक दूसरे से तुलना नहीं करनी चाहिए, लेकिन इससे उनमें बेहतर करने के लिए जोश बढ़ता है। इस तरह के मूल्यांकन व्यवस्था योग गुरु और शिष्य दोनों के लिए अच्छी है। भविष्य में स्थानीय स्तर पर बच्चों के लिए योग प्रतियोगिताएं आयोजित कराना चाहती हूँ।
1: मीनाक्षी जी ने यह भी बताया कि वैसे तो जापान में योग काफी लोकप्रिय है, लेकिन अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये महिलाओं में अधिक प्रचलित है। वहीं बहुत ही कम किशोर और पुरुष इससे जुड़े हैं। लेकिन अब जब योग को एक खेल के रूप में प्रचार मिलेगा तो ये पुरुषों को भी आकर्षित करेगा। लोग समझ सकेंगे कि योग सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं, बल्कि ये अनुशासन, बल, संतुलन, एकाग्रता और कलात्मक अभिव्यक्ति भी सिखाता है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जापान का शानदार प्रदर्शन भी लोगों में गर्व की भावना जगाएगा और अधिक लोगों को योग से जोड़ेगा, खासतौर से युवा पीढ़ी को।
0: अक्सर देखा जाता है कि युवा योग की बजाय जिम जाना पसंद करते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन मीनाक्षी मियोको जी 18 साल की आयु में योग से जुड़ी। जीवन में आई कठिनाई ने उन्हें योग की तरफ मोड़ा। वे कहती हैं,
2: My dad died. After that, I got very depressed.
0: मेरे पिता की मृत्यु के बाद मैं अवसाद से घिर गई। तब लोगों ने सुझाव दिया कि योग शुरू करो। उस समय मैं और मेरी माँ बहुत कठिन दौर से गुजर रहे थे। मैं अपने मानसिक तनाव या अवसाद के लिए दवाई नहीं लेना चाहती थी, लेकिन जब योग शुरू किया तो उससे मुझे बहुत मानसिक शांति मिली। इसके बाद योग में आगे अध्ययन करने के लिए मैं भारत गई। वहीं मेरे योग गुरु ने मुझे मीनाक्षी नाम दिया। अब करीब 20 साल से छोटे बच्चों से लेकर बड़ों को योग सिखा रही हूँ।
1: उन्होंने बताया कि हाल ही में आयोजित विश्व योग प्रतियोगिता में शामिल होने के कारण योग ने दूसरी बार उनके जीवन को बदला है। स्वर्ण पदक मिलने से खुद पर तो भरोसा बढ़ा है, सम्मान भी बढ़ा है, देश विदेश के नए दोस्त भी बने हैं।
0: वाकई योग के अनगिनत फायदे हैं।
1: सही कहा। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय हम सब के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सभी उसी दिशा यानी बढ़ती उम्र की ओर अग्रसर हैं।
0: बिल्कुल, बढ़ती आयु में स्वस्थ रहने के लिए योग अपनाएं।
1: जी हाँ, तो मित्रों जल्दी से पत्र लिखें और बताएं कि जापान की स्वर्ण पदक विजेता मीनाक्षी मियोको से खास बातचीत आपको कैसी लगी।
0: आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम के दूसरे पड़ाव की ओर और लेते हैं ये पत्र। छत्तीसगढ़ से आनंद मोहन बाइन ने 17 मई को प्रसारित चेरी के देश से कार्यक्रम के प्रसारण की गुणवत्ता पर 3 जून को विस्तृत रिपोर्ट भेजने के साथ सिर्फ एक लाइन लिखी है। आज के कार्यक्रम में विजय कुमार जी ने नए कार्यक्रम की कमी का जिक्र किया है। लगता है रेडियो जापान अब श्रोताओं से कोई मतलब नहीं रखता है।
1: आनंद मोहन जी, बात तो जरा गंभीर है, लेकिन NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा को अपने श्रोता मित्रों से भरपूर लगाव है, तभी तो हम हर बार कुछ नया प्रयास करते हैं और नई से नई जानकारी लाने के लिए अथक मेहनत भी करते हैं। खाने से जुड़ी याद पर एक कार्यक्रम में लंबी चर्चा हुई, फिर अभी हाल ही में जापान में ऑटो रिक्शा जैसी अनोखी सवारी की सैर पर भी हम आपको लेकर गए। इन सब के बारे में आपके पत्र का हमें अभी तक इंतजार है।
0: बस नवीनतम जानकारी प्रेषित करने के तरीके में थोड़ा बदलाव है। अब सुनने के साथ ही वेबसाइट पर नई नई वीडियो का भी आनंद ले सकते हैं।
1: और हाँ, स्नेह दो तरफा होना चाहिए ना। हमारी मेहनत के लिए नियमित पत्र तो लिखे ही जा सकते हैं। आपके अगले पत्र का हमें इंतजार है। अब देखिए, ये पत्र आया है छत्तीसगढ़ जिला बालोद से शिव कुमार अंगारे शिक्षक का। भाई वाह, उनका ये देखिए हस्तलिखित पत्र है। और रोहिणी जी, जानती है एक जमाने में इनके खत बहुत ही नियमित रूप से मिला करते थे। कई साल बाद उन्होंने हमारी सुध ली है।
0: अच्छा, यानी उम्मीद करते हैं कि एक बार फिर पत्रों का सिलसिला शुरू होगा। पत्र में क्या लिखा है पढ़कर बताएं जरा।
1: मैं रेडियो जापान का कई वर्षों तक नियमित श्रोता रहा हूँ, साथ ही पत्र के माध्यम से विविध कार्यक्रम में भाग लेता रहा हूँ। NHK से डाक द्वारा प्रकाशित सामग्री मिलती रही है, लेकिन किसी कारणवश कुछ वर्षों से रेडियो जापान नहीं सुन पाया। शॉर्टवेव पर आपका प्रसारण नहीं मिल रहा है। मैं पुनः NHK वर्ल्ड जापान से नियमित श्रोता के रूप में जुड़ना चाहता हूँ। अतः अनुरोध है कि मेरी इन जिज्ञासाओं का समाधान करें। बहुत सारे प्रश्न भी लिखे उन्होंने। क्या रेडियो जापान का प्रसारण आज भी शॉर्टवेव पर होता है? यदि हाँ तो कृपया फ्रीक्वेंसी और प्रसारण समय बताएं। क्या हम आपके कार्यक्रम किसी मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं? क्या NHK श्रोता मित्र पत्रिका अब भी प्रकाशित होती है? यदि हो तो प्रेषित कीजिए।
0: शिव कुमार जी, NHK वर्ल्ड की हिंदी सेवा परिवार में आपका दोबारा स्वागत है। हमारा प्रसारण अब भी शॉर्टवेव पर 11655 किलोहर्ट्ज पर भारतीय समय अनुसार रात 9 बजे से उपलब्ध है।
1: जी बिल्कुल, आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं। ऐप स्टोर में जाकर NHK वर्ल्ड का ऐप खोजकर डाउनलोड करें और हिंदी भाषा का चयन करें। ये ऐप और हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध सारी सामग्री पूरी तरह से निशुल्क है। आप अब रेडियो की बजाय हमारे कार्यक्रम और वीडियो इस ऐप पर सुन और देख सकते हैं।
0: जहां तक बात श्रोता मित्र पत्रिका की है, तो अब इलेक्ट्रॉनिक पेपरलेस का चलन है। वेबसाइट पर हर सप्ताह प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की तस्वीर आदि के साथ उनकी संक्षिप्त जानकारी दी जाती है। तो यह अगला पत्र केसिंगा उड़ीसा से सुरेश अग्रवाल जी का है। लिखा है, आदरणीय वायला जी एवं शांग्रिला जी, स्नेह नमस्कार। जापान में ऑटो रिक्शा पर पूरा विशेषांक पेश करने के लिए शुक्रिया।
1: अरे आगे पढ़ो, और क्या लिखा है?
0: नहीं, सिर्फ इतना ही लिखा है।
1: क्या बात कर रही हो, सिर्फ इतना से लिखा है, एक लाइन? सुरेश जी, आप हमेशा ही विस्तार से बहुत सार गर्भित प्रतिक्रिया लिख देते हैं। इस बार उसकी कमी बहुत खल रही है। इस भीषण गर्मी में सब खैरियत तो है ना? आपके अगले लंबे पत्र का इंतजार है। और देखिए, फेसबुक पर उमेश कुमार शर्मा की टिप्पणी है, वायला जी और शांगला जी कोनिचवा, शायद आप मुझे भूल गई हो, किंतु मैं नारनौल हरियाणा में आपको सदा याद करता हूँ, क्योंकि मैं रेडियो जापान को रेडियो पर सुनता था, लेकिन जब आप इंटरनेट पर अपने कार्यक्रम सुनाने लगे तो आपसे संपर्क नहीं कर पाया। जापानी व्यंजन बनाने की रेसिपी आपने जो शुरू की, उनका स्वाद लेने का मन करता है, लेकिन चेरी के देश से कार्यक्रम में मिवाको कोएजुका जी को सुनने का जो आनंद मिलता था वो काफ़ी अच्छा लगता था। एक जापानी होने के बावजूद उनका श्रोताओं के पत्रों का उत्तर देने वाला अंदाज मुझे अब तक याद है। आपके द्वारा समय समय पर भेजे गए कार्ड्स मेरे पास सुरक्षित हैं, जिनको देखकर दिल को सुकून मिलता है और इनके द्वारा रेडियो जापान हिंदी सर्विस की यादें ताज़ा हो जाती हैं।
0: उमेश जी, आपकी टिप्पणी का स्वागत है। हालांकि मैं अभी नई हूं, लेकिन जब भी एनएचके की पुरानी यादें ताज़ा करते हैं तो हमारे सहयोगी पुराने श्रोता मित्रों को भी खूब याद किया करते हैं। वो कहते हैं ना, ओल्ड इज गोल्ड। आज के कार्यक्रम पर आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार है। और 14 जून के अंक पर बनाई रील पर बड़े मज़ेदार कमेंट्स हैं।
1: अच्छा
0: जी, मृणालिका ओझा ने थम्सअप की इमोजी भेजी है, तो लाल बाबू पांडे ने भारत में आपका स्वागत किया है, मुरारी साह ने रील को बहुत अच्छा बताया है, अशोक मोजीदारा ने नाइस लिखा है।
1: वाह, श्रोताओं के मजेदार कमेंट सुनकर मजा आ गया। एक कमेंट मोनिता मिधा का भी है, खाने से जुड़ी बचपन की यादों को खंगालते हुए वे लिखती हैं, 31 मई के अंक में रोचक चर्चा सुनी, गर्मी की छुट्टियों में दादा दादी के साथ बिताए दिनों की यादें ताज़ा हो गईं, गर्मियों में मिलने वाले कमल के ताज़ा बीज का स्वाद आज भी याद है, बादाम जैसा स्वाद था, पंजाब में इन्हें कालालियां कहते हैं।
0: वाकई बचपन की यादें हमेशा याद रहती हैं।
1: रोहिणी जी, आपका भी कोई ऐसा प्रिय व्यंजन है जिससे कुछ खास यादें जुड़ी हैं क्या?
0: जी, मैं तो बिहार से हूँ, होली के समय बनने वाले दूध पुए को बहुत याद करती हूँ।
1: दूध पुए, हमारे यहाँ मालपुए बनते
0: जी,
1: हैं।
0: हाँ, तो एक जैसे ही होते हैं और घर का स्वाद तो खुद से बन नहीं पाता, इसलिए यादों में ही रह गए हैं ये सब।
1: जी, ये बात तो है, घर का स्वाद की बात ही अलग है। और दोस्तों, वक्त कह रहा है कि आपसे फिर मिलेंगे, इसलिए एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से अनुमति दीजिए अपनी सखी शांग्रिला जैन को,
0: रोहिणी रमन को।
1: सायोनारा, नमस्कार।

0: कुछ उनकी सुने, कुछ अपनी कहें। आइए दीवानखाना में चलें।
1: ये है आपका अपना प्रोग्राम दीवान खाना। आपके मेजबान हैं खलील शिराजी, सोफिया जमशेद और वसीमा आबिद।
2: प्रोग्राम दीवान खाना में तमाम सामेईन को आदाब। जापान समेत दुनिया के अक्सर मुल्कों में फादर्स डे जून की तीसरे इतवार को मनाया जाता है। आज सब अबुओं के लिए नेक तमन्नाएं।
1: वाह, मई में मदर डे और जून में फादर्स डे।
0: जी जनाब, जापान में फादर्स डे को कहते हैं चीची नो ही।
1: मदर्स डे पर तो बच्चे इजहार तशक्कुर के लिए माओं को तोहफे देते हैं, कार्ड भेजते हैं। फादर डे पर वाले साहिबान के लिए भला क्या होता है?
0: मेरा ख्याल है उनकी खिदमात पे सिर्फ खराज तहसीनी पेश कर देना काफ़ी होगा। वैसे हमारे पाको हिंद में तो फादर्स डे नहीं मनाया जाता, इसलिए मैंने उर्दू सर्विस की जापानी रुकन ह्योरी उराता साहिबा से इस बारे में पूछा तो कहती हैं, बचपन में फादर्स डे के मौके पर स्कूल में वो लोग अपने वालिद की तस्वीर बनाते, कोई मजमून या पैगाम लिख कर बतौर तोहफा देते, और वो कहती हैं कि तब फादर्स डे के आस पास जो इतवार आता था उसको स्कूल में ओपन डे होता ताकि वालिद हजरात क्लास देखने आ सकें। वो कहती हैं अब मुआशरे में ज्यादा समाजी तब्दीलियां आने से शायद हर स्कूल में ये पहले जैसा ना हो, लेकिन उनके लिए फादर्स डे की नुमाया तरीन याद यही है।
2: लेकिन मेरे ख्याल में हर इलाके के स्कूल का अपना अपना तरीका होता है। अच्छा खलील साहब, सुना है जापान में फादर्स डे का तसव्वुर अमेरिका से आया था?
1: जी सोफिया साहिबा, सुनने में आया है कि अमेरिका से जापान में फादर्स डे का तसव्वुर लाने वाले जो साहब थे वो फैशन इंडस्ट्री से वाबस्ता थे।
0: जी, और जापान मेंस फैशन यूनिटी नामी तंजीम के मुताबिक ये साहब 1980 में न्यूयॉर्क में अमेरिका की फादर्स डे काउंसिल के डायरेक्टर से मिलने के बाद जापान आए तो उन्होंने फैसला किया कि वो एक निजी तंजीम फादर्स डे काउंसिल जापान कायम करेंगे, और यूं 1982 से जापान में बड़े पैमाने पर फादर्स डे मनाया जाने लगा और फादर्स डे येलो रिबन कैंपेन का बाकायदा आगाज हो गया।
1: सोफिया साहिबा, वसीमा साहिबा ने तो हमें तारीख पढ़ाना शुरू कर दी है।
2: अरे भाई, तारीख का लेक्चर रोकें और फादर्स डे पर बात कुछ देर के लिए मुलतवी करके सामईन के पैगामात की तरफ आएं।
0: जी सोफिया, तारीख का सबक लेना जरूरी है। मेरी अम्मी कहती थी हिस्ट्री केमिस्ट्री बड़े बेवफा, रात को याद किया सुबह को सफा।
1: याद करें और फिर भूल जाएं।
0: जी
1: ये तो याद रखिए कि अब सामीन के पैगामात का वक्त है। तो पहला पैगाम है मायरा अख्तर साहिबा का जापान के ओसाका से। मायरा साहिबा लिखती हैं कि मैं 28 मार्च 2026 को ओसाका में होने वाले पाकिस्तान कल्चरल फेस्टिवल में गई थी। वाकई बहुत अच्छा लगा। जापान की सुमो रेसलिंग और रिवायती सिंधी कुश्ती मुलाखड़ा को एक साथ देखना बड़ा दिलचस्प तजुर्बा था। बाकी कल्चरल परफॉर्मेंसेस ने भी माहौल को काफ़ी पुरजोश और रंगीन बना दिया। बतौर पाकिस्तानी दिल खुश हो गया कि हमारी सकाफत को इतने प्यारे अंदाज में दिखाया गया। बाद में NHK की उर्दू सर्विस पर इसके बारे में सुनकर लगा जैसे वो दिन फिर से याद आ गया हो।
2: मायरा अख्तर साहिबा, पैगाम का और प्रोग्राम को सराहने का शुक्रिया। हमें भी पहले तजस्सुस था कि ये मुकाबला कैसा होगा, लेकिन अच्छा रहा और अब आपकी राय सुनकर हमें भी और मज़ा आ रहा है।
0: बहुत मज़ा आया था, खूब रौनक थी। और खलील साहब, इस मुकाबले से पहले सुम्मो पहलवानों ने बड़े तहम्मुल से समझाया और मुलाखड़ा वाले मल पहलवानों ने इतने शौक से सीखकर भरपूर मुकाबला किया, पूरी जान लड़ाई। उनकी दोनों की स्पोर्ट्समैन स्पिरिट वाकई काबिले तारीफ रही।
1: अच्छा, तो अब आगे बढ़ते हैं। मेरे पास पैगाम है मुशर्रफ हुसैन शेख साहब का। लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, बरसों बीत गए, NHK को हम पाबंदी से सुनना छोड़ चुके थे, लेकिन हमने NHK को याद रखा हुआ है। मैंने कुछ दिनों पहले ईमेल भेजी थी लेकिन जवाब मौसूल नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि हमारी दिलचस्पी की कद्र करें। आपसे गुजारिश है कि फ़ोन पर रابطہ कायम करें। उन्होंने अपना फ़ोन नंबर भी लिखा है।
2: जी मुशर्रफ साहब, पैगाम का बेहद शुक्रिया। NHK ने भी आपको याद रखा हुआ है, जैसे ही आपका पैगाम मिला उसको शामिल कर लिया है।
0: मुशर्रफ हुसैन साहब, हम आपकी दिलचस्पी की बहुत कदर करते हैं। उम्मीद है आइंदा मज़ीद तफसीली पैगाम भेजेंगे। हमारी वेबसाइट पर मौजूद दीगर सिलसिलों पर भी नज़र डालिए, अपनी राय रवाना कीजिए, हम मुंतज़िर हैं।
1: اور میں منتظر ہوں کہ اب وسیمہ صاحبہ بتائیں کہ ان کے گھر میں فادر ڈے کیسے منایا جاتا ہے۔
0: ارے میرے بچے اب بڑے ہو گئے، ان کے بچپن کی بات یاد آ رہی ہے۔ تو جب ابھی ہم نے بتایا جیسے کہ جاپان میں فادرز ڈے جون کی تیسری اتوار ہوتا ہے، تو بچے اسکول میں جو کارڈ بناتے ہیں ان کے اسکول میں بھی رواج تھا کارڈ بنانے کا، تو وہ جمعے کو ہی لا کے ابو کو دے دیتے بند لفافہ کہ اس میں آپ کے لیے سرپرائز ہے، اتوار کو ہی کھولیے گا۔
2: پیارے بچوں کی پیاری باتیں، اور اب پروگرام میں شامل کریں گے موسیقی۔
0: آج کا گیت ہے فوبوکا، یعنی امی اور ابو کا گیت۔ اسے پیش کرنے والا گروپ ہے گرین۔ فکوشیما پریفیکچر میں تشکیل پانے والا گروپ گرین چار گلوکاروں پر مشتمل ہے، ہیدے، ناوی، کونی اور سو۔
2: یہ سب اراکین لائسنس یافتہ ڈینٹسٹ ہیں، لیکن وہ اپنے کام اور طبی دیکھ بھال کے درمیان توازن قائم رکھنے کے لیے اپنے چہرے چھپاتے ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے گرین کے نام سے ڈیبیو کیا، اس کے بعد انہوں نے کئی ہٹ گانے پروڈیوس کیے
0: جیسے آئی اتا، کسے کی، ہاروکا اور اورنج۔ کسے کی اب بھی جاپان میں سب سے زیادہ ڈاؤن لوڈ ہونے والے سنگل کا 2015 کا گنیز ریکارڈ رکھتا ہے۔
1: انہوں نے کئی ایسے گانے پیش کیے جنہیں زندگی کی مسرت کے گیت سمجھا جا سکتا ہے۔
0: ان کی بلاک بسٹر فلم کسے کی آنو ہی نو سوبیتو کی وجہ سے ان کا طرز زندگی بھی گفتگو کا موضوع بنا۔
2: یہ فلم ان کی موسیقی اور کہانی دونوں پر مبنی تھی۔ مارچ 2024 میں انہوں نے گروپ کا نام گرین سے گرین بوائز میں تبدیل کر دیا۔ لگتا ہے کہ ان کی نئی سرگرمیاں مستقبل میں بہت توجہ کا مرکز بنیں گی۔
1: فوبوکا گیت کے بارے میں بتاتے چلیں کہ یہ بچوں کی پرورش کرنے والے والدین کے شکریہ کا گیت ہے۔ والدین جن کے لیے بچے بہت مشکلات پیدا کرتے ہیں، جیسے رات دیر تک باہر رہنا اور انہیں تنگ کرنا وغیرہ،
2: لیکن گلوکار کے مطابق وہ واقعی شکر گزار ہیں کہ والدین نے انہیں قبول کیا، اور کہتے ہیں کہ اب بھی کبھی کبھار میں انہیں تنگ کرتا ہوں اور انہیں پریشان کرتا رہتا ہوں،
0: لیکن کہتے ہیں میں اپنی زندگی گزاروں گا، آس پاس کے لوگوں کا شکر گزار رہوں گا۔ فوبو کا گیت کے بولوں میں ہے، امی ابو بہت شکریہ، میں ابھی بھی سمجھدار نہیں ہوا، لیکن آپ کی ساری محبت پاس رکھوں گا، زندگی میں آگے بڑھتا رہوں گا۔ تو آئیے سنتے ہیں۔

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

0: यह है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। स्वागत है सभी श्रोताओं का आपके मनपसंद कार्यक्रम चेरी के देश से। मैं उगते सूर्य के देश से सबसे पहले स्वीकार करें अपनी सखी शांग्रीला जैन का कोनिचिवा, नमस्कार और आदाब।
1: सभी दोस्तों को रोहिणी रमन का भी कोनिचिवा, नमस्कार। फिर आया रविवार और लेकर आ गए हैं हम आपके पत्रों के उत्तर और जापान की एक योग साधक के साथ खास बातचीत।
0: रोहिणी जी, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आपको अनेक शुभकामनाएं।
1: शांग्रीला जी, आपको और हमारे सभी श्रोता मित्रों को भी बधाई।
0: धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। वैसे जानती है, इस साल का योग दिवस तो और भी खास हो गया है।
1: अच्छा, ऐसी क्या खास बात हुई?
0: खास बात ये हुई कि भारत के अहमदाबाद शहर में 4 से 8 जून तक पहली अंतर्राष्ट्रीय योगासन प्रतियोगिता हुई, जिसमें दुनिया भर के 79 देशों से 522 योग खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। भारत प्रथम स्थान पर आया, लेकिन जानती है दूसरे स्थान पर कौन सा देश था?
1: दूसरे स्थान पर जापान था ना, है ना?
0: जी बिल्कुल सही कहा। इस प्रतियोगिता में अलग अलग आयु वर्ग की 6 श्रेणियां थी, जिसमें 10 से 14 साल के बच्चों का योग प्रदर्शन तो हैरतअंगेज करने वाला था, लेकिन सबसे बड़ी आयु वर्ग यानी 45 से 55 साल की सीनियर कैटेगरी भी किसी तरह से कम नहीं थी। इस आयु वर्ग में पारंपरिक योग आसन प्रतिस्पर्धा कैटेगरी सी में स्वर्ण पदक जीत कर आई जापान की मीनाक्षी मियोको से हमें बातचीत का मौका मिला, जिसके कुछ अंश हम खास तौर से अपने श्रोताओं के लिए लेकर आए हैं। मीनाक्षी जी से हमारा पहला सवाल था कि स्वर्ण पदक जीतकर उन्हें कैसा महसूस हो रहा है, तो वे बोली,
2: "信じられない、 まだそんな感じです。"
1: मीनाक्षी जी कह रही हैं, अविश्वसनीय, मुझे अब भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मैंने स्वर्ण पदक जीता है। जीवन में कभी स्वर्ण पदक जीतने की कल्पना नहीं की थी। जब प्रतियोगिता खत्म हुई और परिणाम घोषित हुआ, तब भी ये सच नहीं लग रहा था, लेकिन गले में मेडल पहनाए जाने के बाद थोड़ा थोड़ा विश्वास होने लगा। फिर जब टीम और परिवार ने बधाई देनी शुरू की, तो सही मायने में सचमुच जीत का एहसास हुआ और इस जीत की बहुत खुशी हुई।
0: हमने मीनाक्षी जी से पूछा कि ये विश्वास करना आखिर इतना मुश्किल क्यों था, तो उन्होंने बताया कि हालांकि वे करीब 30 साल से योग कर रही हैं और पिछले 2 दशक से बच्चों और बड़ों को सिखा भी रही हैं, लेकिन उन्होंने योग को एक खेल प्रतियोगिता के रूप में कभी नहीं देखा था। साथ ही दुनिया भर से आए प्रतियोगियों की प्रतिभा देखकर उन्हें लगा शायद वे उनके सामने टिक नहीं पाएंगी। एरेना की चकाचौंध

0: लेकिन जब एक खिलाड़ी के रूप में तैयारी शुरू की तो आसन में पूरी स्थिरता और संतुलन के साथ लंबे समय तक रहने का अभ्यास किया और हर रोज 4 घंटे नियमित अभ्यास करने लग गई। वहीं अपने खान पान में कब भोजन करना है, कब पानी पीना है, ऊर्जा बनाए रखने के लिए क्या करना है जैसी बारीकियों पर भी अध्ययन शुरू कर दिया। भारत के योगा कोच ने भी आसनों का अभ्यास ऑनलाइन कराया, लेकिन इस पहली विश्व योगासन प्रतियोगिता के आयोजन का पैमाना मेरी कल्पना से कहीं अधिक विशाल और शानदार था तथा कड़ी प्रतिस्पर्धा थी।
1: पारंपरिक योगासन कैटेगरी में खिलाड़ी को आसन की जटिलता, स्थिरता, संतुलन, आसन में आने और बाहर निकलने के सही तरीके के साथ ही आसन को कितनी देर के लिए कितनी खूबसूरती से पकड़ा है जैसे बिंदुओं पर अंक दिए गए। खिलाड़ी को नियत समय में सूची से चुने हुए आसन करने होते हैं, जितना मुश्किल आसन उतना ही अधिक अंक। विश्व योगासन प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर आने वाली जापानी टीम में कुल 21 सदस्य थे जिसमें से 18 खिलाड़ी थे। टीम ने अलग अलग आयु वर्ग और विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में 3 स्वर्ण, 3 रजत और 5 कांस्य पदक जीते। सबसे बड़ी आयु का खिलाड़ी 54 वर्ष के थे और सबसे छोटे 11 साल की 2 बच्चियां थीं। मीनाक्षी जी के इन शिष्यों ने आर्टिस्टिक युगल योग प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक जीता।
0: आर्टिस्टिक युगल योग प्रतिस्पर्धा, इसमें किस तरह का योग किया जाता है?
1: इसमें खिलाड़ी को 4x4 मीटर के चौकोर घेरे में संगीत पर नृत्य के साथ योगासन करना पड़ता है। बच्चों की तैयारी के बारे में मीनाक्षी मियोको जी ने बताया।
2: इंडो नो कोच नो ओकागे मो अरिमासु शी मीनाक्षी
0: जी कह रही हैं कि बच्चों की तैयारी में भारत के कोच से बहुत मदद मिली। मैं भी बच्चों को प्रोत्साहित तो किया करती थी, लेकिन उनकी माताओं की मेहनत भी कम नहीं है, उनका बहुत सहयोग रहा। आर्टिस्टिक योग परफॉर्मेंस में पिरामिड फॉर्मेशन यानी एक पर एक चढ़कर आसन करने के अधिक अंक थे, इसलिए हमने अपने प्रदर्शन में इन्हें शामिल किया। इनके तालमेल के लिए दोनों बच्चों का एक साथ होना जरूरी था। ये दोनों बच्चियां अलग अलग शहरों में रहती हैं, इसलिए रोजाना मिल भी नहीं सकती थी, सिर्फ ऑनलाइन अभ्यास कर सकते थे। इतना बड़ा स्टूडियो मिलना भी मुश्किल था, इसलिए जब भी मिले तो किसी पार्क में अभ्यास किया।
1: मीनाक्षी जी बच्चों के भोलेपन से खूब प्रभावित हैं। उन्होंने बताया कि ये बच्चे छोटे हैं और उन्होंने कभी इतने लोगों के बीच इतने विशाल स्तर पर योग नहीं किया था। इस तनाव के कारण दोनों आपस में खूब लड़ते, फिर जल्दी दोस्त भी बन जाते। प्रतियोगिता से पहले भी लड़े, लेकिन अंततः दोनों ने बहुत अच्छा तालमेल करते हुए शानदार प्रदर्शन किया और कांस्य पदक जीता। अपने प्रतिस्पर्धियों के लिए भी खुले दिल से ताली बजाते और उनका हौसला बढ़ाया करते। वे कहती हैं कि बच्चे कितने सच्चे होते हैं, उनमें सहज रूप से स्पोर्ट्स पर्सन स्पिरिट होती है।
0: वाकई बच्चों की मासूमियत बहुत प्यारी होती है। अच्छा शांग्रिला जी, आम लोग अक्सर योग को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य तथा आध्यात्म से ही जोड़ते हैं, लेकिन योग को एक खेल प्रतिस्पर्धा के रूप में देखने से इसके प्रति लोगों का नजरिया बदल जाएगा, है ना?
1: यकीनन बदलेगा। इस बारे में मीनाक्षी जी का कहना है।
0: वे कह रही हैं, आशा करती हूँ इससे जापान में योग को और बढ़ावा मिलेगा। इस तरह का मूल्यांकन चीजों को और स्पष्ट कर देता है। अपने अंक देखकर बच्चे प्रेरित होते हैं और बेहतर करने का प्रयास करते हैं। योग शरीर को लचीला और मन की एकाग्रता बढ़ाता है, जिसका फायदा अन्य कार्य करने में भी देखा जा सकता है। मैं कई साल से बच्चों को योग सिखा रही हूँ। ये प्रणाली बहुत ही स्पष्ट और प्रभावशाली है। बच्चों को स्पष्ट लक्ष्य चाहिए। हालांकि योग सिखाता है कि हमें एक दूसरे से तुलना नहीं करनी चाहिए, लेकिन इससे उनमें बेहतर करने के लिए जोश बढ़ता है। इस तरह के मूल्यांकन व्यवस्था योग गुरु और शिष्य दोनों के लिए अच्छी है। भविष्य में स्थानीय स्तर पर बच्चों के लिए योग प्रतियोगिताएं आयोजित कराना चाहती हूँ।
1: मीनाक्षी जी ने यह भी बताया कि वैसे तो जापान में योग

0: काफी लोकप्रिय है, लेकिन अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये महिलाओं में अधिक प्रचलित है। वहीं बहुत ही कम किशोर और पुरुष इससे जुड़े हैं। लेकिन अब जब योग को एक खेल के रूप में प्रचार मिलेगा तो ये पुरुषों को भी आकर्षित करेगा। लोग समझ सकेंगे कि योग सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं, बल्कि ये अनुशासन, बल, संतुलन, एकाग्रता और कलात्मक अभिव्यक्ति भी सिखाता है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जापान का शानदार प्रदर्शन भी लोगों में गर्व की भावना जगाएगा और अधिक लोगों को योग से जोड़ेगा, खासतौर से युवा पीढ़ी को।
1: अक्सर देखा जाता है कि युवा योग की बजाय जिम जाना पसंद करते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन मीनाक्षी मियोको जी 18 साल की आयु में योग से जुड़ी। जीवन में आई कठिनाई ने उन्हें योग की तरफ मोड़ा। वे कहती हैं,
2: माय डैड डाइड आफ्टर दैट, आई गॉट वेरी डिप्रेस्ड।
1: मेरे पिता की मृत्यु के बाद मैं अवसाद से घिर गई। तब लोगों ने सुझाव दिया कि योग शुरू करो। उस समय मैं और मेरी माँ बहुत कठिन दौर से गुजर रहे थे। मैं अपने मानसिक तनाव या अवसाद के लिए दवाएं नहीं लेना चाहती थी, लेकिन जब योग शुरू किया तो उससे मुझे बहुत मानसिक शांति मिली। इसके बाद योग में आगे अध्ययन करने के लिए मैं भारत गई। वहीं मेरे योग गुरु ने मुझे मीनाक्षी नाम दिया। अब करीब 20 साल से छोटे बच्चों से लेकर बड़ों को योग सिखा रही हूँ।
0: उन्होंने बताया कि हाल ही में आयोजित विश्व योग प्रतियोगिता में शामिल होने के कारण योग ने दूसरी बार उनके जीवन को बदला है। स्वर्ण पदक मिलने से खुद पर तो भरोसा बढ़ा है, सम्मान भी बढ़ा है, देश विदेश के नए दोस्त भी बने हैं।
1: वाकई योग के अनगिनत फायदे हैं।
0: सही कहा। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय हम सब के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सभी उसी दिशा यानी बढ़ती उम्र की ओर अग्रसर हैं।
1: बिल्कुल, बढ़ती आयु में स्वस्थ रहने के लिए योग अपनाएं।
0: जी हाँ, तो मित्रों जल्दी से पत्र लिखें और बताएं कि जापान की स्वर्ण पदक विजेता मीनाक्षी मियोको से खास बातचीत आपको कैसी लगी।
1: आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम के दूसरे पड़ाव की ओर और लेते हैं ये पत्र। छत्तीसगढ़ से आनंद मोहन बाइन ने 17 मई को प्रसारित चेरी के देश से कार्यक्रम के प्रसारण की गुणवत्ता पर 3 जून को विस्तृत रिपोर्ट भेजने के साथ सिर्फ एक लाइन लिखी है। आज के कार्यक्रम में विजय कुमार जी ने नए कार्यक्रम की कमी का जिक्र किया है। लगता है रेडियो जापान अब श्रोताओं से कोई मतलब नहीं रखता है।
0: आनंद मोहन जी, बात तो जरा गंभीर है, लेकिन NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा को अपने श्रोता मित्रों से भरपूर लगाव है, तभी तो हम हर बार कुछ नया प्रयास करते हैं और नई से नई जानकारी लाने के लिए अथक मेहनत भी करते हैं। खाने से जुड़ी याद पर एक कार्यक्रम में लंबी चर्चा हुई, फिर अभी हाल ही में जापान में ऑटो रिक्शा जैसी अनोखी सवारी की सैर पर भी हम आपको लेकर गए। इन सब के बारे में आपके पत्र का हमें अभी तक इंतजार है।
1: बस नवीनतम जानकारी प्रेषित करने के तरीके में थोड़ा बदलाव है। अब सुनने के साथ ही वेबसाइट पर नई नई वीडियो का भी आनंद ले सकते हैं।
0: और हाँ, स्नेह दो तरफा होना चाहिए ना। हमारी मेहनत के लिए नियमित पत्र तो लिखे ही जा सकते हैं। आपके अगले पत्र का हमें इंतजार है। अब देखिए, ये पत्र आया है छत्तीसगढ़ जिला बालोद से शिव कुमार अंगारे, शिक्षक का। भाई वाह, उनका ये देखिए हस्तलिखित पत्र है। और रोहिणी जी, जानती है एक जमाने में इनके खत बहुत ही नियमित रूप से मिला करते थे। कई साल बाद उन्होंने हमारी सुध ली है।
1: अच्छा, यानी उम्मीद करते हैं कि एक बार फिर पत्रों का सिलसिला शुरू होगा। पत्र में क्या लिखा है पढ़कर बताएं जरा।
0: मैं रेडियो जापान का कई वर्षों तक नियमित श्रोता रहा हूँ, साथ ही पत्र के माध्यम से विविध कार्यक्रम में भाग लेता रहा हूँ। NHK से डाक द्वारा प्रकाशित सामग्री मिलती रही है, लेकिन किसी कारणवश कुछ वर्षों से रेडियो जापान नहीं सुन पाया। शॉर्टवेव पर आपका प्रसारण नहीं मिल रहा है। मैं पुनः NHK वर्ल्ड जापान से नियमित श्रोता के रूप में जुड़ना चाहता हूँ। अतः अनुरोध है कि मेरी इन जिज्ञासाओं का समाधान करें। बहुत सारे प्रश्न भी लिखे उन्होंने। क्या रेडियो जापान का प्रसारण आज भी शॉर्टवेव पर होता है? यदि हाँ तो कृपया फ्रीक्वेंसी और प्रसारण समय बताएं। क्या हम आपके कार्यक्रम किसी मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं? क्या NHK

0: श्रोता मित्र पत्रिका अब भी प्रकाशित होती है, यदि हो तो प्रेषित कीजिए।
1: शिव कुमार जी, NHK वर्ल्ड की हिंदी सेवा परिवार में आपका दोबारा स्वागत है। हमारा प्रसारण अब भी शॉर्टवेव पर 11655 किलोहर्ट्ज पर भारतीय समय अनुसार रात 9 बजे से उपलब्ध है।
0: जी बिल्कुल, आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं। ऐप स्टोर में जाकर NHK वर्ल्ड का ऐप खोजकर डाउनलोड करें और हिंदी भाषा का चयन करें। ये ऐप और हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध सारी सामग्री पूरी तरह से निःशुल्क है। आप अब रेडियो की बजाय हमारे कार्यक्रम और वीडियो इस ऐप पर सुन और देख सकते हैं।
1: जहां तक बात श्रोता मित्र पत्रिका की है, तो अब इलेक्ट्रॉनिक पेपरलेस का चलन है। वेबसाइट पर हर सप्ताह प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की तस्वीर आदि के साथ उनकी संक्षिप्त जानकारी दी जाती है। तो यह अगला पत्र केसिंगा उड़ीसा से सुरेश अग्रवाल जी का है। लिखा है, आदरणीय वायला जी एवं शांग्रिला जी, स्नेह नमस्कार। जापान में ऑटो रिक्शा पर पूरा विशेषांक पेश करने के लिए शुक्रिया।
0: अरे आगे पढ़ो, और क्या लिखा है?
1: नहीं, सिर्फ इतना ही लिखा है।
0: क्या बात कर रही हो, सिर्फ इतना से लिखा है, एक लाइन? सुरेश जी, आप हमेशा ही विस्तार से बहुत सार गर्भित प्रतिक्रिया लिख देते हैं। इस बार उसकी कमी बहुत खल रही है। इस भीषण गर्मी में सब खैरियत तो है ना? आपके अगले लंबे पत्र का इंतजार है। और देखिए, फेसबुक पर उमेश कुमार शर्मा की टिप्पणी है, वायला जी और शांगला जी कोनिचवा, शायद आप मुझे भूल गई हो, किंतु मैं नारनौल हरियाणा में आपको सदा याद करता हूँ, क्योंकि मैं रेडियो जापान को रेडियो पर सुनता था, लेकिन जब आप इंटरनेट पर अपने कार्यक्रम सुनाने लगे तो आपसे संपर्क नहीं कर पाया। जापानी व्यंजन बनाने की रेसिपी आपने जो शुरू की, उनका स्वाद लेने का मन करता है, लेकिन चेरी के देश से कार्यक्रम में मिवाको कोएजुका जी को सुनने का जो आनंद मिलता था वो काफ़ी अच्छा लगता था। एक जापानी होने के बावजूद उनका श्रोताओं के पत्रों का उत्तर देने वाला अंदाज मुझे अब तक याद है। आपके द्वारा समय समय पर भेजे गए कार्ड्स मेरे पास सुरक्षित हैं, जिनको देखकर दिल को सुकून मिलता है और इनके द्वारा रेडियो जापान हिंदी सर्विस की यादें ताज़ा हो जाती हैं।
1: उमेश जी, आपकी टिप्पणी का स्वागत है। हालांकि मैं अभी नई हूं, लेकिन जब भी NHK की पुरानी यादें ताज़ा करते हैं तो हमारे सहयोगी पुराने श्रोता मित्रों को भी खूब याद किया करते हैं। वो कहते हैं ना, ओल्ड इज गोल्ड। आज के कार्यक्रम पर आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार है। और 14 जून के अंक पर बनाई रील पर बड़े मजेदार कमेंट्स हैं।
0: अच्छा
1: जी, मृणालिका ओझा ने थम्सअप की इमोजी भेजी है, तो लाल बाबू पांडे ने भारत में आपका स्वागत किया है, मुरारी साह ने रील को बहुत अच्छा बताया है, अशोक मोजीदारा ने नाइस लिखा है।
0: वाह, श्रोताओं के मजेदार कमेंट सुनकर मजा आ गया। एक कमेंट मोनिता मिधा का भी है, खाने से जुड़ी बचपन की यादों को खंगालते हुए वे लिखती हैं, 31 मई के अंक में रोचक चर्चा सुनी, गर्मी की छुट्टियों में दादा दादी के साथ बिताए दिनों की यादें ताजा हो गईं, गर्मियों में मिलने वाले कमल के ताजा बीज का स्वाद आज भी याद है, बादाम जैसा स्वाद था, पंजाब में इन्हें कालालिया कहते हैं।
1: वाकई बचपन की यादें हमेशा याद रहती हैं।
0: रोहिणी जी, आपका भी कोई ऐसा प्रिय व्यंजन है जिससे कुछ खास यादें जुड़ी हैं क्या?
1: जी, मैं तो बिहार से हूँ, होली के समय बनने वाले दूध पुए को बहुत याद करती हूँ।
0: दूध पुए, हमारे यहाँ मालपुए बनते
1: हैं। जी हाँ, तो एक जैसे ही होते हैं और घर का स्वाद तो खुद से बन नहीं पाता, इसलिए यादों में ही रह गए हैं ये सब।
0: जी ये बात तो है, घर का स्वाद की बात ही अलग है। और दोस्तों, वक्त कह रहा है कि आपसे फिर मिलेंगे, इसलिए NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से अनुमति दीजिए अपनी सखी शांग्रिला जैन को,
1: रोहिणी रमन को।
0: सायोनारा, नमस्कार।

0: कुछ उनकी सुने, कुछ अपनी कहें। आइए दीवान खाना में चलें।
1: ये है आपका अपना प्रोग्राम दीवान खाना। आपके मेजबान हैं खलील शिराजी, सोफिया जमशेद और वसीमा आबिद।
2: प्रोग्राम दीवान खाना में तमाम सामेईन को आदाब। जापान समेत दुनिया के अक्सर मुल्कों में फादर्स डे जून की तीसरे इतवार को मनाया जाता है। आज सब अब्बुओं के लिए नेक तमन्नाएं।
1: वाह, मई में मदर डे और जून में फादर्स डे।
0: जी जनाब, जापान में फादर्स डे को कहते हैं चीची नो ही।
1: मदर्स डे पर तो बच्चे इजहारे तशक्कुर के लिए माओं को तोहफे देते हैं, कार्ड भेजते हैं। फादर डे पे वालिद साहिबान के लिए भला क्या होता है?
0: मेरा ख्याल है उनकी खिदमात पे सिर्फ खराज तहसीनी पेश कर देना काफ़ी होगा। वैसे हमारे पाको हिंद में तो फादर्स डे नहीं मनाया जाता, इसलिए मैंने उर्दू सर्विस की जापानी रुकन ह्योरी उराता साहिबा से उस बारे में पूछा तो कहती हैं, बचपन में फादर्स डे के मौके पर स्कूल में वो लोग अपने वालिद की तस्वीर बनाते, कोई मजमून या पैगाम लिख कर बतौर तोहफा देते, और वो कहती हैं कि तब फादर्स डे के आस पास जो इतवार आता था उसको स्कूल में ओपन डे होता ताकि वालिद हजरात क्लास देखने आ सकें। वो कहती हैं अब मुआशरे में ज्यादा समाजी तब्दीलियां आने से शायद हर स्कूल में ये पहले जैसा ना हो, लेकिन उनके लिए फादर्स डे की नुमाया तरीन याद यही है।
2: लेकिन मेरे ख्याल में हर इलाके के स्कूल का अपना अपना तरीका होता है। अच्छा खलील साहब, सुना है जापान में फादर्स डे का तसव्वुर अमेरिका से आया था?
1: जी सोफिया साहिबा, सुनने में आया है कि अमेरिका से जापान में फादर्स डे का तसव्वुर लाने वाले जो साहब थे वो फैशन इंडस्ट्री से वाबस्ता थे।
0: जी, और जापान मेंस फैशन यूनिटी नामी तंजीम के मुताबिक ये साहब 1980 में न्यूयॉर्क में अमेरिका की फादर्स डे कौंसिल के डायरेक्टर से मिलने के बाद जापान आए तो उन्होंने फैसला किया कि वो एक निजी तंजीम फादर्स डे कौंसिल जापान कायम करेंगे, और यूं 1982 से जापान में बड़े पैमाने पर फादर्स डे मनाया जाने लगा और फादर्स डे येलो रिबन कैंपेन का बाकायदा आगाज हो गया।
1: सोफिया साहिबा, वसीमा साहिबा ने तो हमें तारीख पढ़ाना शुरू कर दी है।
2: अरे भाई, तारीख का लेक्चर रोकें और फादर्स डे पर बात कुछ देर के लिए मुलतवी करके सामईन के पैगामात की तरफ आएं।
0: जी सोफिया, तारीख का सबक लेना जरूरी है। मेरी अम्मी कहती थी हिस्ट्री केमिस्ट्री बड़े बेवफा, रात को याद किया सुबह को सफा।
1: याद करें और फिर भूल जाएं।
0: जी ये
1: तो याद रखिए कि अब सामीन के पैगामात का वक्त है। तो पहला पैगाम है मायरा अख्तर साहिबा का जापान के ओसाका से। मायरा साहिबा लिखती हैं कि मैं 28 मार्च 2026 को ओसाका में होने वाले पाकिस्तान कल्चरल फेस्टिवल में गई थी। वाकई बहुत अच्छा लगा। जापान की सुमो रेसलिंग और रिवायती सिंधी कुश्ती मुलाखड़ा को एक साथ देखना बड़ा दिलचस्प तजुर्बा था। बाकी कल्चरल परफॉर्मेंसेस ने भी माहौल को काफ़ी पुरजोश और रंगीन बना दिया। बतौर पाकिस्तानी दिल खुश हो गया कि हमारी सकाफत को इतने प्यारे अंदाज में दिखाया गया। बाद में NHK की उर्दू सर्विस पर इसके बारे में सुनकर लगा जैसे वो दिन फिर से याद आ गया हो।
2: मायरा अख्तर साहिबा, पैगाम का और प्रोग्राम को सराहने का शुक्रिया। हमें भी पहले तजस्सुस था कि ये मुकाबला कैसा होगा, लेकिन अच्छा रहा और अब आपकी राय सुनकर हमें भी और मज़ा आ रहा है।
0: बहुत मज़ा आया था, खूब रौनक थी। और खलील साहब, इस मुकाबले से पहले सुम्मो पहलवानों ने बड़े तहम्मुल से समझाया और मुलाखड़ा वाले मल पहलवानों ने इतने शौक से सीखकर भरपूर मुकाबला किया, पूरी जान लड़ाई। उनकी दोनों की स्पोर्ट्समैन स्पिरिट वाकई काबिले तारीफ रही।
1: अच्छा, तो अब आगे बढ़ते हैं। मेरे पास पैगाम है मुशर्रफ हुसैन शेख साहब का। लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम,